महाराज, तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ शिव मेरे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डीएस साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट।

हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है।

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डीएस साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डीएस साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं, सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है। हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले।

हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए।

दूसरी ही कदर करता है। और स्वागत है, सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त आपके पसंदीदा कार्यक्रम हिलू फरमाइश का है, जहां आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीतों का होगा शानदार संग्रह। तो तैयार हो जाइए और अपने मन पसंद गीत सुनने और अपने खास लोगों के गीत समर्पित करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं आप अपने कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, किसके लिए सुनना चाहते हैं और किसका नाम आपकी आवाज़ के साथ है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सुहाने सफ़र को आरंभ करते हैं इस पहले गीत के साथ। दोस्तों, आज की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधोपुर से मोनिका मीना जी की तरफ से। सुनते हैं उनकी फरमाइश का एक खूबसूरत सा सॉन्ग रेडियो 89.6 पर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: आपको?
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुमन पटेल है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सागर, मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं तेनू समझ आवांगी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: जम्मू में।
1: हाँ जी
2: सुनते रहिए दिल से दिल 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
4: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैंने आज ना प्यासा सपन फिल्म का सुना दीजिए, इन हसीन वादियों में। और मैडम

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: हाँ
2: जी,
1: चंबल मारे गाड़ी में बसेरी। सर आप जल्दी सुनाना है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: गांव में जब जुलम ढाणा ले डाकू आन बड़े तो लोगा की चीख जंगल तक पहुंची। मेरा दादा नूकया करता।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: जी मैम, आवाज आ रही है?
1: हाँ सर, आ रही है ना आवाज। नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद शादाब खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना आप सुना दे हो, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो नमस्ते
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम चौधरी हंसिया।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: गाना तो बहुत बढ़िया लगा।
3: हाँ जी बताइए।
2: चुपचाप तू क्यों खड़ी है।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना
2: गम देखो जी।
3: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हेलो,
2: क्या मैम?
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अक्सर इस दुनिया में।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो डीएस, मुझे से बोल रहे हैं
3: आप? सर, आपका नाम बताएं।
2: कोमल।
3: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर।
3: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: आज की रात।
3: आज की रात? बिल्कुल सुना रहे हैं, मैं आपकी फरमाइश करता हूँ। रेडियो डीएस
4: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा।

0: DS. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो डीएस म्यूजिक से बोल रहे हैं आप?
1: यस सर, आपका नाम बताएं।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: सागर गुजर।
1: सागर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा कमर सुनना चाहते हैं?
2: गुजर जाती।
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के।
2: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका?
2: लक्ष्मी।
1: लक्ष्मी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: ग्राम अकबरपुर, जिला बिजली शांति से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है तारीफार।
0: हाँ जी, और गाने के बोल?
1: आप से आपकी दोस्ती दुश्मनी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नंदराम गुजर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: दरगाह से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाने के बोले लाखों आशिक मर जाते हैं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? जोगे सर। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: आरबी और राज।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: सिंगापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: उन्होंने संगमरमर।
2: कौन सा?
3: उन्होंने संगमरमर।
2: ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: आशित।
3: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: पागल।
3: पागल, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
4: गाना जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला।

0: धोते तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ लिखिया ते उसने रोज पढ़ दी गई
0: पढ़ता सी
1: तू एक दिन हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैनू वेख तेरी छोटी जी स्माइल च सब कुछ पता लग जाए।
0: मुझे तो पता भी नहीं सी कि इतनी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो
1: सके। मुझे पता सी तू आएगा ते मैं तुम्हें दस सका।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: यारी।
4: यारी?
5: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है, बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
6: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ? तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर में चूल्हे जल रहे हैं।
7: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, उसे रोकना है।
8: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड मॉर्निंग बहन जी।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: हफ्ते महीने बरसों नहीं।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
2: यू वेलकम सर।

0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम प्रिंस मीना है सर।
0: प्रिंस मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कॉलेज के पास से बात कर रहा हूँ सर, गंगा
0: बताएं
1: कोशी।
0: सर, रेडियो डीएस से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सिद्धू मूसे वाले का कोई सा प्लान चल रहा था आप।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: मैनू लगता तू आपका वादा भुल गया। वादा नहीं भुलिया, मैनू एक एक लफज याद है। बेटी शहर च पढ़ती है इसलिए डरता कि पिक्चर एडजस्ट होगी कि नहीं। विक्रम, सारे पंजाबियों दियां जड़ां पिंडां च ने, तो एक बार उन्हें पिंड लैके तो आ। चलो आलिया।
3: ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆ।

0: करते हैं
1: सर। जनाब शर्मा जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं, जिला डोडा तहसील ट्राटरी गांव कंठी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है तो गाना सुनूंगा खानदान का है बड़ी देर भाई नंदलाला।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में, खुल के धन्यवाद।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को मेरे अंकल जी श्री केशव शर्मा जी और मेरी दीदी है सुषमा रानी जी और मेरी दीदी है साक्षी शर्मा अंशु शर्मा और सबको ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा आपके माध्यम से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुना रहे सर आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में, खुल के धन्यवाद। हेलो

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10:00 से 2:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10:00 से दोपहर

सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजे या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो DS 89.6।

0: हेलो,
1: नाम बताए।
0: रंजन सिंह गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? गाना बताए।
0: गुर्जर जाति जीरो की
1: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते। हेलो,
1: हाँ हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: नाम क्या है आपका?
1: पंचायत
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: उत्तर प्रदेश जिला फरुखाबाद अमेठी जजीत।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं नहीं दूंगा फिल्म का
0: गाने के बोल।
1: गाने के बोल?
0: हाँ जी,
1: ना आया करो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: यशवंत पटेल मैम।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं उत्तरापुर सागर जिला मध्य प्रदेश।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: मैं तो हूँ पागल मैम।
2: कौन सा सर?
3: मैं तो हूँ पागल, बस सतनम का मैं गाना।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। एक गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो मैम।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मानू पटेल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: कटारा हिल्स से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: ये किसना? ये किसना है?
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम।
2: यू वेलकम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो।
3: हाँ हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम प्रियांशी पटेल है।
2: कहाँ से बात कर रही हो?
3: कटारा हिल्स भोपाल।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मैं जंगल है आधी रात है।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम।
2: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6
3: हेलो
4: नमस्ते दीदी
3: सर नमस्ते सर नाम क्या है आपका
4: लतीफ अहमद रैना कश्मीर से
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर
4: आज कुली नंबर वन का
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी
4: कोई भी गाना चलाइए
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: निजान
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दो कटोले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
3: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
3: विनोद कुमार सैनी।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी मौकला।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: मैडम ओ माहिबे गाने का बोल है, मूवी का नेम है क्या यही प्यार है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: क्या यही प्यार है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर एक। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अपन को यशोदा का नंद लाला, ये वाला सुनवा दें।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है सर आपका?
0: अरुण,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल तोड़ दिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर आपका। गुजर
1: विश्वास गुजर
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नसिया कॉलोनी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: जाने वाली वाला तो जो काफी न्यू आया है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: नितेश
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस पे?
3: टॉपलेस।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, टॉपलेस सॉन्ग, आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मनीष कुमार।
1: मनीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: तू चांदनी रात में गोली चला के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: नैना की तलवार चली।
0: है जी?
1: नैना की तलवार चली।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

निगाहों में झांकूं तो राजी राजी लगती है, जो उसे देख लूं तो सांसें थम सी जाती है, जो ना देखूं तो धड़कन भागी भागी लगती है, छोरी झुमका पायल पैर नशीड़ी लागे है, छोरा बिन पिए मदहोश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो,
3: नाम बताइए सर।
2: अम्मार खान।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर।
3: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
2: मेरा।
3: अजी
2: मन मेरा।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक

0: रेडियो डीएन 89.6 आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो। मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो। हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजे या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डी 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप
2: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
4: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।
5: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
6: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
2: कमाल लायो।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
4: नमस्कार, मैं मेघा धाकड़ फ्रॉम जयपुर। मैंने GNM नर्सिंग में डिप्लोमा किया है जयपुर के सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज से। मैं 2020 की पास आउट हूँ और 2021 में मेरा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ था और मैं आज उप स्वास्थ्य केंद्र पवालिया ब्लॉक सांगानेर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ 2022 से पोस्टेड हूँ। आज मुझे 4 साल हो गए एक रूरल एरिया में अपनी सेवाएं देते हुए और इस 4 साल के जॉब पीरियड में मेरे पास बहुत पेशेंट आए हैं जिनमें से एक मोस्ट कॉमन डिजीज देखने को मिली, इवन कि 70% लोगों में ये डिजीज मुझे देखने को मिली है, जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा बहुत सी महिलाएं आती हैं मेरे पास में जिनका एक ही कहना होता है कि मैडम मोटापा कम ही नहीं होता है, हम कैसे कम करें, आपके पास कोई दवाई है तो दवाई दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटापे के चलते प्रॉब्लम डेली रूटीन के काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनके पैरालिसिस हो रखा है और वो बहुत हैवी वेट है। अब एक बेड रिटन पेशेंट है जिसके ऑलरेडी पैरालिसिस हो रखा है और वो हैवी वेट भी है, तो उसकी केयर करने में बहुत डिफिकल्टी आती है फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट को एवरी सिंगल हावर में उसको करवट दिलाना, उसके पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होती है डेली रूटीन की वो करना, तो बहुत परेशानी आती है उसमें। और आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये डिजीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आज अपन इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। आज जानेंगे कि ओबेसिटी क्या होती है, किन कारणों से होती है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
5: इसका बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
2: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
4: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
5: ओ किसे मायने पर हीरी लाटो नहीं गण पाया।
6: नहीं अब

0: दोस्तों अभी आपने सुना नए तरह नए कार्यक्रम। दोस्तों दोपहर का एक बजने वाला है, इस कार्यक्रम को यहीं समापन कर आपको लेकर चलते हैं आपके मनपसंद अगले कार्यक्रम भूली बिसरी यादें में। दोस्तों आपके इंतजार की घड़ी को करते हैं खत्म और आरंभ करते हैं भूली बिसरी यादें।
1: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

दोस्त, वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर है।
2: जी जी,
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की है।
1: हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही।

0: और दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: Hello friends, my name is Aastha Bansal. Studying in 9th class, before coming in BS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point. In quality, regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET.
1: Shahar ka naya magic, Radio DS 89.6.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डियर साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
1: भगवान तू है, अरे सुने।
2: ओहो, ए पंचन पंचायती रे चक्कर में थाने गरी हालत तो दिनों दिन बिगड़ती जावे है। और थे पंच बनिया फिरो
1: थारे लेनो देनो है, मैं जानू मारो काम जाने, थाने थोड़ी कमावनो पड़े है जो को तू इतनी बात करे।
2: मैं तो हावड़ी क्यों हूँ मान जाओ, काल ने टाबर दाना मारी, मारो बाप तो की नहीं करियो।
1: बादरी बाद में देखी जाए, मारो महादेव बाबू सब ठीक कर दे।
2: कई महादेव बाबू ठीक कर दे, सुबह शाम तो थे लेरा में रहो।
1: हाका मत कर अबे, क्यों जीत तो कर ले।

0: तेरी जेर लागे।
1: और कहीं थने कह दियो नी थू तारे रह जड़ो कर बैठी रे, मैं मारे खाऊं पीऊं थारे के लेनो देनो।
0: मारे नी लेनो जने किने लेनो, चुपचाप है अमली डारी सबा छोड़ दो तो ठीक है, बाकी थाने लारे कोई आज रहूं कोई कल रहूं जाऊं मैं तुम्हारे पीर।
1: अरे आज थाने कहीं भौरी छड़ी है, कहीं बात है, एक ही बात ने रटे है।
0: अरे मैं तो सही कहूं, काल ने माचा माते पड़िया पड़िया भुगतो ए सबा करनिया हाल चाल पूछने कोनी आवेला।
1: कहीं गैली बाता करे है, पूरी उम्र रहेगी पंचायती करता नहीं।

0: आज तो मैं थारी बात हची ऐसा आज ते मारी अकल ठिकाने कर दी। हाल तो मैं उंदा खर्चा है की सार कोनी। मैं तो अबे आज रे आज ही अमल डोडा रे देऊं टीरा।
1: वाह बाप जी जना तो अन्याल कर दे हो।
0: और कहीं चोको खाओ चोको पियो मौज मस्ती में रहो कहीं मतलब कोनी नशा पता।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में ना डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

0: मनोरंजन का सरताज है।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ मैडम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं बात कर रहा हूँ मैडम स्कूटर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं आपको बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे आप।
0: वो क्या करे सर, बिजी ज्यादा चलता है ना कॉल।
1: मैम मैं नेट कॉलिंग कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट किया आपको।
0: नहीं सर, नेट कॉलिंग हमारे पास अलाउड नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, मेरे को इतना वो गाना सुनना है मैम, बरसात का, बरसात बंजारे वाला।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: मैं लाइन पे ही हूँ इसलिए बोल रहा हूँ।
0: बस थोड़ा ही टाइम लगेगा।
1: थोड़ा कितना? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा?

0: रेट मोदी एस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: धंडेराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम बदर क्या से?
2: कौन सा गाने सुनना चाहोगे सर?
3: सर गाने को बोल रहे हैं मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ हैं।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: यू वेलकम सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का।
1: सर नमस्ते।
2: नमस्ते तलक भाई, चौधरी आज कर रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: हाल तो फर्स्ट कॉल लगा दीजिए।
1: नहीं सर, सेकंड कॉल है आपका।
2: सेकंड से
1: फर्स्ट पे उनका है।
2: उनका?
1: अरे वो आते हैं ना गुदरगा से, चंडी राम जी का।
2: बहुत दूर दूर से फोन आते हैं आपके।
1: चंडी राम जी का है फर्स्ट कॉल।
2: चलो हमारा लिखो।
1: हाँ जी बताइए।
2: बहुत सुंदर गाना।
1: हाँ जी।
2: शाम हुई,
1: शाम हुई,
2: शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया।
1: शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया।
2: हाँ राइट।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: तो वक्त हो चुका है 4:46 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यू वेलकम सर।
2: हेलो
3: हेलो एंजी, नमस्कार जी
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: दिल से दिल मिलने का कारण कोई होता है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद मेरी बहन।

0: अरुण दीदी सादर नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चलो चले मितवा ऊंची निची राहों में, ये प्यारा सा गीत सुना दीजिए रेडियो डीएस का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो डीएस में। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो जी, नाम बताएं सर।
1: नाम है सर सागर मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सागर जी?
1: सुंदरी से कर रहे हैं सर।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: जिस दिन तू मेरी होगी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अजय मैडम।
0: कहाँ से बात करूँ? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: दोस्तों बिलाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहां बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसीविना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसीविना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसीविना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के साथ।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसेवीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसीविना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
3: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
4: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसीविना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसेवीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के साथ।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसेविना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
3: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसेवीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त रिसेवीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: 89.6 पे रेडियो DS।
1: इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ भूली बिसरी यादें।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस,
0: रेडियो डीएस। यहां बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहां बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीए 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो

0: मैजिक रेडियो डीए 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीए
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीए।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो
2: डी एस यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ पर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ पर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस

बताता हूँ, भूषण सिंह गणेश आलोलिया इन दोनों आगे बैर न है। तू ध्यान राखिए, अगर आज की पार्टी में कुछ पंगा होया तो तेरे हाथ से जींद की सीट गई।

फटी फटी चीन पाके ब्राउन रेप एंड लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के कटी फटी चीन पाके ब्राउन रेप एंड लाके गली

0: रुबा तावली चाल सात बज लिए फिर ऑटो भी नहीं मिलन का।
1: इसका इस्तेमाल है मैं।

Shenexus. हाँ जी, किवें लग्या मेरा गाना? लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो, तो मेरे नवे नवे गाने सुनने के लिए गीत MP3 दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।

0: भाई साहब।
1: हेलो मम्मा, कितने हो? मम्मा,
0: बेटा मैं ड्यूटी थे। हाँ
1: तुसी कोई 2 मिनट रेस्ट कीते आ? प्लीज
0: जी बेटा, क्यों?
1: मम्मा, उन्होंने छोड़ दो ना।
0: बेटा जी मैनू अपनी ड्यूटी करन दियो।
2: और किसी को चाहिए था?
0: हरपाल सिंह, मैनू सारी फाइल्स रेडी चाहिए ने। नवे एसएसपी साहब किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं।
3: जी मैम,
0: ओके
3: जी।

0: हाँ जी सरदार जी।
1: और तू तो कह रहा 15 दिन का ही काम है, महीना पूरा होने आ गया। देखो महीने च एक बंदा नहीं बाहर बुलाया गया, ओए उत्तों इलेक्शन सिर ते आई खड़ी है। पहले जेड़े मेरे मगर झंडिया लै लै नचते जी ना, हुण मेरे बराबर फोटो लाउण फिरदे आ।
0: सरदार जी तुसी मेरे ते यकीन रखो, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ।
1: ਚਾਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ,

0: ऑन वाली जिससे ऑन वाली है,
1: हाँ
0: बस तू रेडी रहे।
1: मैं ना कुछ ठीक नहीं फील कर रहा। आप आज रहने देने, आप फिर किस दिन कर लेंगे?
0: की यार कुड़िया दी तरह नखरे करी जाना।
2: यार ये आवाज कितों आंदी भी है।
0: आगी, आगी, आगी। चल चल चल चल
1: नहीं नहीं

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी थ्री चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।